कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया।

0: क्या हुआ?
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
0: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
2: होनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरी श्याम।

सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हार्दिक सादर नमस्कार और आदाब प्रणाम। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी की दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, सारी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुनने वालों आज शनिचर शनिवार का दिन है, 19 तारीख सितंबर का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को ये दिन लाख लाख बधाई हो, मुबारक हो रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। घड़ी की ओर देखा जाए 8:00 प्रोग्राम में 3 मिनट व्यतीत हो चुका है। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0325656560। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का एप नंबर 0302266611। वेबसाइट होता है radio.sbs.nl। उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए हमारा ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। उसी वेबसाइट की जरिए मेल भी आप कर सकते हैं और रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। मैं हूं आपका खिदमत गुजार अबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरिहरन की आवाज में सुबह सुबह लो शिव का नाम। ये सुंदर भजन हर सुबह आप सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश किया जा रहा है।

के अरंग के आवास में पेश की गई सुबह सुबह लो शिव का नाम। रेडियो SBS की जरिए ये सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। 8:00 प्रोग्राम में 11 मिनट वेटेड हो चुका है, 11 मिनट ओवर 8। आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह, शुभ दिन और एक खूबसूरत सुहाना वीकेंड बस पेश किया जा रहा है। बाहर की ओर देखा जाए तो अंधेरा अंधेरा सा मौसम है, बादल छाया हुआ मौसम है, लेकिन मौसमी समाचार से खबर मिलते हैं कि आज दोपहर की वक्त शाम की वक्त में धूप भी दिखाई देगा। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है, एक प्रोग्राम जो बहुत सी सुनने वालों बस सुनते हैं, हर सुबह आप सभी के लिए पेश किया जा रहा है। सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक सुबह 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक, और हर वीकेंड शनिवार और रविवार सुबह 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक ये प्रोग्राम जो पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में अनूप जलोटा जी की आवाज में एक सुंदर भजन पेश किया जा रहा है। काफी दिनों के बाद ये भजन पेश किया जा रहा है अनूप जलोटा जी की आवाज में। भजन का बोल है बिन सीता के राम।

अनूप जलोटा जी की आवाज में ये सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। बिन सीता के राम अभी आपने सुना ये सुंदर सा भजन जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0332666611। इसी तारकी नंबर पर आप रेडियो SBS का ऐप पर ऐप कर सकते हैं। बहुत सी सुनने वालों हम देख रहे हैं हमारा रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है। खुद मोर्खे कहा है गुड मॉर्निंग आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चलिए प्रोग्राम में सुरेश पत्रकार की आवाज में ये सुंदर भजन एक सुंदर सा श्री हनुमान जी का भजन पेश किया जा रहा है। जरूर आप सुनते ही रहना।

सुंदर सा भजन सुरेश भटकार की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गए सुंदर सा श्री हनुमान जी का भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गए। स्टूडियो के अंदर काफी तार अंदर आते रहते हैं, सभी को शुक्रिया धन्यवाद आप सभी के तार के लिए। कुछ सुनने वालों होते हैं जो तार करके गुड मॉर्निंग कहते हैं, खुद मोर्ख कहते हैं, आप सभी को भी अनहील खुद मोर्ख और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। एक सुनने वालों है जो तार किया है, कुछ बातें हुए हैं और ये सुंदर भजन बस सुनना चाहते हैं। फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम उसी ये फिल्म का ये सुंदर सा भजन पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में। लता जी के गाए हुए भजन है लेकिन अब की बार हम बेला जी की आवाज में आपको सुनाने वाले हैं।

ये सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों के लिए बस पेश की गई है रेडियो एसबीएस की जरिए। आज शनिवार का दिन 19 तारीख सितंबर का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। सभी सुनने वालों को एक बार फिर से शुभ सुबह, शुभ दिन, शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है। जो लोग अभी अभी अपना रेडियो ऑन किया है, रेडियो एसबीएस का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। देन हाग शहर की रहने वाली कमला भी प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं और एक सुंदर भजन मांग किया है आप सभी सुनने वालों के लिए। तो चले सुंदर सा भजन जो है मिलकर सुनते हैं जो आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

सुंदर सा भजन आज की प्रोग्राम में पेश की गई दनहक शहर की रहने वाली कमला, कमला की खास मांगी हुई भजन आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए। चले प्रोग्राम में अगली बार सुंदर सा भजन जो पेश किया जा रहा है सभी सुनने वालों की सेवा में, और ये सुंदर भजन को मांग करने वाली है उत्तराखंड शहर की रहने वाली श्रीमती माखदा नुंदा। श्रीमती माखदा नुंदा खुद अपने लिए, अपना पूरा परिवार के लिए और सभी सुनने वालों के लिए ये सुंदर सा भजन मांग किया है।

के आवास में ये सुंदर सा भजन पेश की गए मेरे मन में है राम। यूट्रेक्ट शहर की ये रहने वाली श्रीमती माखदा नुंदा, श्रीमती माखदा नुंदा ये सुंदर भजन आज की ये प्रोग्राम में मांग किया आप सभी सुनने वालों के लिए खुद अपने लिए। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं फिल्म जय संतोषी माँ, उसी फिल्म का एक सुंदर भजन महेंद्र कपूर और साथियों के आवाज में पेश होगा। आमसफोर्ट शहर का रहने वाला राजन ये सुंदर सा भजन मांग किया है खुद अपने लिए, अपने पूरा परिवार के लिए और सभी सुनने वालों के लिए। फिल्म का नाम जय संतोषी माँ, महेंद्र कपूर और साथियों के आवाज में ये सुंदर भजन।

सुंदर सा भजन महेंद्र कपूर की आवाज में पेश की गई फिल्म का नाम था जय संतोषी माँ। उसी फिल्म का ये सुंदर सा भजन मांग करने वाला था आमसफोर्ट शहर का रहने वाला राजन। राजन ये सुंदर भजन मांग किया खुद अपने लिए, अपना पूरा परिवार के लिए और सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए। सुनने वालों एक आखिरी सुनने वालों की मांगी हुई भजन पेश होगा और उसके बाद आरती भजन पेश किया जाएगी। जी लोगों ने आज के प्रोग्राम में और सुनने वालों है जो भजन मांग किया है, तुम लोग से निवेदन है आने वाले प्रोग्राम में जब भी आप भजन सुनना चाहेंगे तो समय पर हमें खबर करने के लिए, तार करने के लिए। आज की प्रोग्राम में एक आखिरी सुनने वालों की मांगी हुई भजन पेश किया जा रहा है और सुंदर भजन मांग करने वाला है उत्तराखंड लाइटसराइन गिरधारी स्त्रात का रहने वाला राजन गिरधारी। और ये सुंदर भजन मांग किया है सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, खुद अपने लिए, अपना पूरा परिवार के लिए और रेडियो SBS का पूरा टीम के

Utrecht, Leidsterrein, Geerdhariestraat का रहने वाला राजन गिरधारी है। ये सुंदर भजन मांग किया आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, खुद अपने लिए और अपना पूरा परिवार और रेडियो SBS का पूरा टीम के लिए। चलिए यहाँ से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार के तरफ से, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर भी ऐप किया है, उनके लिए, उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह, शुभ दिन, शुभ वीकेंड के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

से सुनने वालों ये प्रोग्राम को सुनते हैं तो आप सभी सुनने वालों को भी स्वागत किया जा रहा है गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। चले यहाँ से पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम की ओर हम आपको ले चलते हैं लता मंगेशकर शमशाद बेगम और मोहम्मद रफी की आवाज में गाना पेश होगा बाजू बाउरा फिल्म का नाम दूर कोई गाए 030-22-66-66-11 स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है और इसी तार के नंबर पर ऐप भी आप कर सकते हैं।

भारत भूषण और खासतौर पर मीना कुमारी का फिल्म फिल्म का नाम बैजू बावड़ा, उसी फिल्म का गाना बस पीस की गए। 1952 का फिल्म और खासतौर पर लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम की आवाज में ये गाना पेश की गई, दूर कोई गाए। चले फिल्म में दो रास्ते की ओर, मरहूम मोहम्मद रफी के होगा प्रोग्राम में ये गाना पेश किया जा रहा है, ये रेशमी जुल्फे, मरहूम मोहम्मद रफी फ्रॉम द मूवी दो रास्ते।

रजेश खन्ना और मुमताज का फिल्म, फिल्म का नाम दो रास्ते, मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में गाना भी आपने सुना, ये रेशमी जुल्फे। रेडियो SBS की सर ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। DAB प्लस रेडियो की जरिए हमारा प्रोग्राम भी सुनाई देता है हॉलैंडीज के बीच में मिड नीदरलैंड में दूर दूर शहरों तक और प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में भी ये प्रोग्राम दूर दूर शहरों तक बस सुनाई देता है और वो भी अपना मोटर कार में अपना घरों में ये प्रोग्राम DAB प्लस रेडियो की जरिए आप सुन सक गए हैं। उसी सुनने वालों है जो अपना मोबाइल फोन की जरिए मोबाइल टेलीफोन की जरिए भी सुनते हैं और वो भी रेडियो SBS का वेबसाइट पर, उसी वेबसाइट पर आप जाइए और हमारा प्रोग्राम जो है रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है अच्छी क्वालिटी साउंड में आप सुन सकते हैं। और रेडियो SBS का वेबसाइट पर तरह तरह की खबरें होते हैं, मौसमी समाचार और रोजाना आपका द हॉरोस्कोप, और द हॉरोस्कोप जब ही आप चाहे जाकर आप देख सकते हैं। अब की बार हम आपको ले चलेंगे फिल्म प्यार ही प्यार, फिल्म में जो काम किया है धर्मेंद्र एन विजयंतीवाला, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में गाना आप सुनेंगे। सुतमेर शहर की रहने वाली, सुतमेर शहर की रहने वाली नलिनी, खास गाना आज की शनिवार की सुबह की प्रोग्राम में मांग किया है, तू मेरा मैं तेरी दुनिया जले तू जले, फ्रॉम द मूवी प्यार ही प्यार।

मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में गाना बस पेश की गई फिल्म का नाम प्यार ही प्यार। सुतमेर शहर की रहने वाली नलिनी ये गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। शुभ दिन पेश किया जा रहा है, शुभ वीकेंड और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर इसी तरह से सुनते ही रहना। धर्मेंद्र और विजयंती माला का फिल्म है, फिल्म प्यार ही प्यार। चले प्रोग्राम में गाना फिल्म इज्जत, उसी फिल्म का बस पेश किया जा रहा है लता जी की आवाज में, और इंग्लैंड यानी कि इंग्लैंड से गाना मांग करने वाली है नैला। नैला ये खास गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया है, ऐप द्वारा तार किया, और ये गाना आज की सुबह की प्रोग्राम में मांग किया है इंग्लैंड में यानी कि इंग्लैंड में। हमारा प्रोग्राम नैला बस हमेशा सुनते हैं आज भी, और आज की प्रोग्राम में ये गाना मांग किया है।

या आप हमारा रेडियो SBS का ऐप पर भी तार कर सकते हैं, ऐप भी आप कर सकते हैं। तो चले सुनने वालों की ये मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, फिल्म तेरे मेरे सपने। एक बार फिर से आज की प्रोग्राम में होगा लता मंगेशकर और रोटरडम शहर की रहने वाली, इनो हमारा प्रोग्राम हमेशा फॉलो करते हैं। रिया भी रोटरडम शहर में हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं और लता जी की आवाज में एक पुरानी फिल्म का गीत मांग किया है, फिल्म का नाम तेरे मेरे सपने।

आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुन वालों की सेवा में रोटरडम शहर की रहने वाली रिया रिया की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। काफी खूबसूरत गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया। सुन वालों आप भी एक गाना सुनना चाहेंगे तो समय पर तार कीजिए, देर में मत तार कीजिए। अगर आप एक गाना सुनना चाहेंगे आज की शनिवार की सुबह की प्रोग्राम में तो स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं 0322 66 66 11 पर, या तो ऐप द्वारा भी आप तार कर सकते हैं। घड़ी की ओर देखा जाए 9:07 व्यतीत हो चुका है। शिकार फिल्म का गीत अब की बार पेश होगा। 1968 का फिल्म 1968 का फिल्म का एक गीत आप सुनेंगे मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में। आमस्टरडम शहर का रहने वाला मरा सुरिनाम देश का मशहूर गाने वाला मिका सुखू जी हमारा प्रोग्राम में भी हिस्सा ले रहे हैं। एक बड़ी खूबसूरत प्यार भरी गाना मोहम्मद रफी की आवाज में, तो चले मिलकर सुनते हैं मिका सुखू जी का मांगी हुई गाना जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। फिल्म सिका

album Traffic या बांस में फिल्म शिकार उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। एम्स्टरडम शहर का रहने वाला मिका सुखू ये खूबसूरत गाना रफी साहब की आवाज में मांग किया जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई। शुभ दिन पेश किया जा रहा है भाई मिका सुखू शुपी कैन के साथ और इसी तरह से रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और ये प्रोग्राम जो है बहुत से सुनने वालों बस सुनते हैं दुनिया के कोने कोने में, हॉलैंड देश के अंदर, हॉलैंड देश के बाहर, देश विदेश में। और इसी तरह से बारंद्रेख्त शहर में प्रेमनाथ भी हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं। और एक खास गाना माइटी मुकेश की आवाज में मांग किया है माइटी मुकेश की आवाज में जोहर महमूद इन गोवा फिल्म का नाम बारंद्रेख्त शहर का रहने वाला प्रेमनाथ का खास मांगी हुई गाना मुकेश की आवाज में।

शहर का रहने वाला प्रेमनाथ का खास मांगी हुई गाना आज की ये पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में बस पेश की गई है। शुभ सुबह, शुभ दिन, शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है इसी तरह से सुनते ही रहना। 030-262-6611 स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का एप नंबर होता है। हम देख रहे हैं हजारों हजारों सुनने वालों इस वक्त प्रोग्राम सुनते हैं रेडियो SBS का। और खास तौर पर रोटरडम शहर के अंदर रशीद पीरू भी हमेशा रेडियो SBS का प्रोग्राम सुनते हैं, हमेशा ऐप भी कर रहे हैं, खुद मोर्ख गुड मॉर्निंग कहते हैं। और रशीद पीरू आज के प्रोग्राम में एक गाना मांग किया है मोहम्मद रफी की आवाज में, तो चले मिलकर सुनते हैं रोटरडम शहर का रहने वाला रशीद पीरू का खास मांगी हुई गाना जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में रोटरडम शहर का रहने वाला रशीद पीरू का खास मांगे हुए गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए है। रशीद आपको शुभ दिन शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। 8 मिनट बाकी है सुबह 10 बजने में, एक गाना और होगा, उसके बाद प्रोग्राम में कुछ खबरें होगा। माइटी मुकेश एंड फिल्म आशिक 1962 का फिल्म, 1962 का फिल्म है फिल्म आशिक। उत्तराखंड शहर का रहने वाला किशोर ये खास गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया है। मैं आशिक हूँ बहारों का, माइटी मुकेश प्रोग्राम में।

0: Luister Radio SBS op je mobiel en computer via radiosbs.nl en op alle internetradio.
1: दस बजकर प्रोग्राम में एक मिनट वेटेड हो चुका है। रेडियो एसबीएस का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में पुरानी फिल्में, संगीतों का प्रोग्राम में और भी सुनने वालों के मांगे हुए गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। लता जी की आवाज में गाना आप सुनेंगे और फिल्म का नाम आखिरी खत। आम्स्टरडम साइटोस की रहने वाली श्रीमती बेया इस वक्त हमारा प्रोग्राम भी सुनते हैं और खबर किया है गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ इस वक्त प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं और एक गाना मांग किया है आज की प्रोग्राम में। तो चले मिलकर सुनते हैं लता जी की आवाज में आम्स्टरडम साइटोस की रहने वाली श्रीमती बेया की मांगी हुई गाना।

लता जी की आवाज में फिल्म आखिरी खत, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आम्स्टरडम साउथ ओस की रहने वाली बेया की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। शुभ दिन शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का प्रोग्राम पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम जो है जरूर सुनते ही रहना। 030-262-6666 स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का एप नंबर भी होता है। रोटरडम शहर की रहने वाली

और वो भी फिल्म का नाम हरे रामा हरे कृष्णा। रोटरडाम शहर की रहने वाली गीता रॉय की तरफ से अपनी प्यारी प्यारी बहन के लिए ये गाना।

रोटरडम शहर की रहने वाली गीता रॉय ये खास गाना अपनी प्यारी बेरी बहन के लिए बस पेश किया है आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में लता जी की आवाज में अभी आपने सुना गीता रॉय आपको शुभ दिन पेश किया जा रहा है शुभ वीकेंड के साथ और रेडियो वेस्ट में इसका प्रोग्राम इसी तरह से सुनते ही रहना रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.nl उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं उसी वेबसाइट के जरिए भी आप मेल कर सकते हैं और रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं DAB प्लस रेडियो के जरिए भी हमारा प्रोग्राम सुनाई देता है हॉलैंड देश के बीच में दूर दूर

एक गाना आज के प्रोग्राम में पेश होगा मोहम्मद रफी की आवाज में, आमस्टरडम शहर का रहने वाला महेंद्र महेंद्र तार किया है और ये गाना बस मांग किया है मोहम्मद रफी की आवाज में।

का रहने वाला महेंद्र ये खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में मोहम्मद रफी की आवाज में मांग किया, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। आसरो मीठे गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। महेंद्र आपको शुभ दिन पेश किया जा रहा है और एक शुभ वीकेंड, और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। शरुत्रेख टेम्स रेफ 237 से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। फरमाइश हुआ इश्तिहारे जरूरी खबरें रिक्लाम के लिए हर एक इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं तार द्वारा मेल और रेडियो SBS का ऐप के जरिए। तार करता है 24/7 पर्दा। हमारा कंतूर का टेलीफोन नंबर पर एक बार होता है 032-65-65-60 और रेडियो SBS का मेल और ऐप भी 24/7 पर दाग बराबर होता है। मेल करना है, ऐप करना है तो रेडियो SBS का वेबसाइट की जरिए radio.sbs.nl की जरिए। फरमाइशें 5 यूरो पर फरमाइश और आपकी तमाम रिक्लाम भी सस्ती दामों में बोडम प्राइस में बस पेश किया जा रहा है। जरूर एक बार इंफॉर्मेशन लीजिए।

की बार गाना जो पेश किया जा रहा है उत्तराखंड शहर का रहने वाला विजय, विजय भी आज की प्रोग्राम में तार किया है और मोहम्मद रफी की आवाज में खूबसूरत गाना मांग किया है। फिल्म का नाम आया सावन झूम के।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना अभी आपने सुना। उत्रेक्ट शहर का रहने वाला विजय का खास मांगे हुए गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

शुरू का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। पुरानी फिल्म भरोसा, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश होगा। और दरहा शहर से लक्ष्मी, लक्ष्मी

करना चाहेंगे। फिल्म भरोसा, उसी फिल्म का गाना लता जी की आवाज में। तो चले देनहाग शहर की रहने वाली लक्ष्मी की मांगी हुई गाना पेश किया जा रहा है।

हमारी बहुत सी सुनने वालों होते हैं जो रोटरडम सुतमेरा के आसपास में रेडियो एसबीएस का प्रोग्राम को सुनते हैं। आपको मालूम होना चाहिए दे अबे प्लस रेडियो के जरिए ये प्रोग्राम भी सुनाई देता है आपकी मौतकार में, आपके घरों में। देनहा रोटरडम सुतमेरा के आसपास में

गाना जो सुतमेर शहर की रहने वाली नेहा मांग किया है, फिल्म का नाम दिल अपना और प्रीत पराई। लता जी की आवाज में चले गाना मिलकर सुनते हैं, फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई, उसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग। सुतमेर शहर की रहने वाली नेहा मांग किया है।

पढ़ाई फिल्म का गाना पेश की गए 1907 का फिल्म 1960 का फिल्म लता जी की आवाज में अभी आपने सुना। इसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गए सुतमेर शहर की रहने वाली नेहा के मांगी हुई गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गए है। आप सभी सुनने वालों को शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है, खासतौर पर नेहा आपको भी शुभ दिन शुभ वीकेंड। मौसम जो है आज का बादल छाया हुआ मौसम, कहीं कहीं समय समय पर रिमझिम बारिश हो रहा है। जैसे कि अभी अभी खबर मिला है धनहा शहर के अंदर में रिमझिम बारिश हो रहा है, तो फिर भी शुभ दिन शुभ वीकेंड और प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। और वैसे हमारी सुनने वालों ऐप पर भी कॉम्प्लीमेंट्स दिया है कि आज के प्रोग्राम में सुनने वालों बड़ी ही खूबसूरत गाने नख़मे मांग किया है। सभी को शुक्रिया धन्यवाद दिया जा रहा है कि आप सभी जोर तोड़ से प्रोग्राम में हिस्सा लिया है और अभी तक सुनने वालों उतार कर रहे हैं, ऐप कर रहे हैं गाना मांग करने के लिए। फिल्म छोटी बहन, उसी फिल्म का एक गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में पेश किया जा रहा है गाना का बोल मैं रिक्शा वाला। दनहाक शहर से तार किया है कमला, और कमला ये गाना को मांग किया है आज के प्रोग्राम में।

मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म छोटी बहन, उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई मोहम्मद रफी की आवाज में मैं रिक्शा वाला। देनहाग शहर से कमला ने तार किया, कमला ये खास गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। सुनने वालों आपसे गुजारिश है, निवेदन है, स्टूडियो की ओर मत तार करने के लिए, मत ऐप करने के लिए। जब भी आप गाना मांग करना चाहेंगे, हमारा लिस्ट अभी कुछ सुनने वालों की गाना पेश होना चाहिए और ये प्रोग्राम तकरीबन 11 बजे तक पेश किया जाएगी। तो आप सभी सुनने वालों से निवेदन है, गुजारिश है कि आप स्टूडियो की ओर मत तार करने के लिए, मत ऐप करने के लिए जब ये आप गाना मांग करना चाहेंगे। आमस्टरडम शहर की ओर हम आपको ले चलते हैं, वहां पर सालों से और हमेशा भी हमारा प्रोग्राम आंद्रे सुनते हैं और आंद्रे ये गाना मांग किया है मोहम्मद रफी की आवाज में, तुमसे अच्छा कौन है। गाना का बोल है जन्म जन्म का साथ है। आमस्टरडम शहर का रहने वाला आंद्रे का खास मांगी हुई गाना।

का रेडियो SBS की जरिए निभाने को मोहम्मद रफी की आवाज में तुमसे अच्छा कौन, तुमसे अच्छा कौन है फिल्म का नाम। मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश की गई आमस्टरडम शहर का रहने वाला आंद्रे का खास मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों आज शनिचर का दिन है, शनिवार 19 तारीख सितंबर का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। म्यूजिक बेस्ट रेडियो स्टेशन का प्रोग्राम आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। एक गाना दनहाग शहर की रहने वाली लिस्ट की ओर देखा जाए तो दनहाग शहर की रहने वाली मालती एक खास गाना मांग किया है आशा भोसले की आवाज में। बस चले मिलकर सुनते हैं फिल्म सावन की घटा, सावन की घटा उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

घटा फिल्म का नाम आशा जी की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई देनहांग शहर की रहने वाली मालती की खास मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों एक आखिरी सुनने वालों की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में अब की बार

में गाना भी शुगम। अब की बार हम आपको ले चलते हैं नीवखाइन शहर की ओर। नीवखाइन शहर में हैंक हमारा प्रोग्राम डीएबी प्लस रेडियो की जरिए बस सुनते हैं, और फिल्म मालहार उसी फिल्म का गाना मांग किया है आज की प्रोग्राम में, और आज की पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम का एक आखिरी पुरानी फिल्म का गीत पेश किया जा रहा है, और वो भी नीवखाइन शहर का रहने वाला हैंक का मांगी हुई गाना।

0: लता जी की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम का एक आखिरी पुरानी फिल्म का गीत पेश की गई, जो खास तौर पर मांग करने वाला था नीवखाइन शहर का रहने वाला हैंग ने तार किया है और प्रोग्राम में भाग लिया ये खूबसूरत पुरानी फिल्म का गीत से। शुभ दिन पेश किया जा रहा है शुपी गैंग के साथ और सभी सुनने वालों को भी एक खूबसूरत सुहाना दिन सुहाना वीकेंड बस पेश किया जा रहा है। यहाँ तक पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। सुनने वालों आपको मालूम होना चाहिए कि 15 तारीख नवंबर उदित नारायण और आदित्य नारायण का लाइव कॉन्सर्ट पेश होने वाले है रोटरडम आहोई RTM स्टेज में। टिकट अपना जल्द से जल्द खरीदिए iStripTickets.com वेबसाइट के जरिए अपना टिकट जाकर आप खरीद सकते हैं। टिकट इन दिनों काफी जोर तोर से बिक रहा है तो जल्द से जल्द अपना टिकट आप खरीदिए iStripTickets.com वेबसाइट पर। चलिए यहाँ से प्रोग्राम में खबरें की ओर हम आपको ले चलते हैं। खबरें के बाद तुरंत हम आपसे फिर मिलते हैं।
1: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.

भुटे मिया लाइव इन कॉन्सर्ट उदित नारायण एंड अतिथि नारायण फादर एंड सोन सामन लाइव ऑफ हेट पोडियम बिलीव एन अनफॉरगेटेबल अवन फॉल इकोनिसे बॉलीवुड हिट्स प्रachtige म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट फ्रॉम टॉप निवो रुक जा ओ दिल दीवाने Zondag 15 november. Zondag 15 november in Rotterdam Ahoy RTM Stage. Twee generaties, één podium. Een onvergetelijke avond. Mis deze spectaculaire live concertavond niet. En koop nu je ticket via i-tickets.com. Raga Events Proudly Presents Baremia Chotemia. Live in concert Udit.

En de film Kuch Kuch Hota Hai, Udit Narayan aur Alka Ji ki awaaz mein ye gana pesh ki gaye hai. सुनी बालू, आपको मालूम रहे कि उदित नारायण और अटिटिया नारायण का लाइव कॉन्सर्ट रोटरडम अहोई में पेश होने वाले हैं। जरूर अपना टिकट आप जल्द से जल्द जाकर खरीदिए iStripTickets.com वेबसाइट पर। जब भी आप ये कॉन्सर्ट देखना चाहेंगे, ये कॉन्सर्ट जरूर आपको देखना चाहेंगे। बाप और बेटे का कमाल होने वाले है स्टेज पर, पोडियम पर। Udit Narayan en Aditya Narayan. Zondag 15 november, Rotterdam, Ahoy RTM Stage mein bas pesh hone wale hain. Isi tarah se ye film Kuch Kuch Hota Hai, usi film ka gana bas program mein abhi aapne suna. 11:11 minute vyatit ho chuka hai.

0: रहेगा। हमारा प्रोग्राम भी इस वक्त सुनते हैं रोटरडम शहर में, शांता शांता भी हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं, शांता रघु ओकन हेल खुद मोर्ख। मैंने कहा ना रोटरडम शहर के अंदर में प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में इन दिनों बहुत से सुनने वालों होते हैं जो हमारा प्रोग्राम सुनते हैं। वहां पर प्रोग्राम भी दे अबे ब्लूज द्वारा भी पेश किया जा रहा है। और रोटरडम शहर की रहने वाली शांता रघु एक गाना मांग किया है, आईना फिल्म का नाम, कुमार सानू और आशा जी की आवाज में,
1: दिल की धड़कन में,
0: मेरी सांसों

मीना फिल्म का गीत पेश की गई कुमार सानू और आशा जी की आवाज में मेरी सांसों में तुम। रोटरडम शहर की रहने वाली शांता रघु ये खास गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई। शुभ दिन पेश किया जा रहा है शुभ वीकेंड के साथ और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। टेम्स ड्राइव 237 शहर उत्तराखंड से ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। सुनने वालों अगर आपको फरमाइशें देना है तो समय पर अपना फरमाइशें आप दीजिए और खासतौर पर जबकि देखा जाए अक्टूबर महीना की ओर तो अक्टूबर महीना में काफी फरमाइश पेश होने वाले हैं। सस्ती दामों में सिर्फ एक ही रेडियो स्टेशन है हॉलैंड देश के अंदर में जो सस्ती दामों में आपकी फरमाइश पेश कर रहे हैं 5 यूरो पर फरमाइश और वो भी सालों से ये दाम आप सभी के लिए रखा गया है इस महंगाई की जमाना में भी जबकि सबके सब सामान के दाम बेंजीन का दाम सबके सब महंगा होता जा रहा है लेकिन आपकी फरमाइश से आपकी रिक्लाम रेडियो SBS के जरिए हमेशा सस्ती दामों में बस पेश किया जा रहा है। और इन दिनों दूर दूर शहरों में दुनिया की कोने कोने में सुनने वालों बस प्रोग्राम सुनते हैं। प्रोफेंसी साइट होलांद में डेया बे प्लस रेडियो के जरिए बहुत से सुनने वालों बस प्रोग्राम देना रोटरडम के आसपास की शहरों में बस सुनते हैं। हमारे हॉलैंड देश के बीच में उत्तराखंड और उत्तराखंड के आसपास की शहरों में दूर दूर शहरों तक आमस्टरडम आमस्टरवर्ट रिक्टिंग आरनहेम आलमेर शहर की ओर सुनने वालों बस DAB प्लस रेडियो के जरिए मोटरकार में घरों में बस सुनते हैं। फिर भी सस्ती दामों में आपकी फरमाइश से बस पेश किया जा रहा है 5 यूरो पर फरमाइश और फरमाइश के बाद ग्रेटस में डाउनलोड लिंक घर की ओर आपकी मेल में भेजा जाता है ताकि आप घर पर पूरा के पूरा फरमाइश आप डाउनलोड कर सके और पूरा फैमिली के साथ फिर से आप सुन सके। Alleen wij kunnen dat, Radio SBS. Niemand anders. Al je servers, Radio SBS, aapko dete hai ki aapki farmaise ke baad download link bheja jata hai. Natuurlijk met heel veel ervaring. Radio SBS heeft heel veel ervaring in radiogebied. Jaar Radio SBS का प्रोग्राम बस पेश किया जा रहा है। हमेशा लोग कहते हैं दैट इज ही लंग। सुनने वालों साथ देते हैं तो रेडियो SBS भी आपके साथ देते हैं। कुमार सानू एंड वेलकम, मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। एक नाम के साथ SBS नाम के साथ एनन फिर तक यार ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। नाम कभी हम लोग नहीं बदले हैं, हमेशा एक नाम के साथ संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS।

साजन के सपने साजन के, उसी फिल्म का ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। स्टूडियो के अंदर में तार जोर तोड़ से आते हैं, हंसी मजाक होते रहते हैं तार पर। लुसरार साइन हेल खराबक, हंसी मजाक करते रहते हैं तार पर। और सुनने वालों भी काफी कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं कि ये दिया बेई द्वारा और इंटरनेट द्वारा अच्छी क्वालिटी साउंड में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। हमारा फुल डिजिटल स्टूडियो से ये आवाज जो निकलते हैं अच्छी क्वालिटी साउंड में हमेशा आप सभी के लिए। चलिए एक बार फिर से कुमार सानू और अलका जी की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है।

0: जरूरी है सनम
1: तेरे बिना।
0: गाना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में, सुतमेर शहर से शांता ने मांग किया ये गाना आज के प्रोग्राम में जो पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS की जरिए। शनिवार है, वीकेंड है, 19 तारीख सितंबर का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। एक गाना पंकज चुडास एंड अलका जी की आवाज में पेश किया जा रहा है। काफी दिनों के बाद ये गीत पेश किया जा रहा है पंकज चुडास और

आप सभी सुनने वालों की सेवा में आज की सुबह की प्रोग्राम में कुछ खूबसूरत नखमे, प्यार भरी नखमे आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए। एक गीत अलका एन कुमार सानू जी की आवाज में पेश होगा, चले मिलकर सुनते हैं अब की बार ये गाना।

कुमार सानू और अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए एक गाना और पेश होगा, उसके बाद हम आपको ले चलेंगे खबरें की ओर, तो जरूर इस गाना को आप सुनिए। कुमार सानू और एक बार फिर से अलका, खबरें के बाद तकरीबन 2 बजे तक कुछ लोकल नगमे आप हर एक के लिए पेश किया जाएगी। और गाना का बोल है खुशबू तेरे प्यार के।

आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। तो चलिए पहला गाना जो आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है और वो भी उमर की आवाज में, जरूर और जरूर सुनते ही रहना, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए आज की लोकल टाइम की प्रोग्राम में मीका सुखू और अक्षता नाइक की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

आवास में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अबकी बार अनिल और फरीशा की आवास में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है।

की आवाज में गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई, अपने तो अपने होते हैं, लोकल टाइम का प्रोग्राम में ये गाना पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में प्रशांत के बाद

Lucky Singh की आवाज में जाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। चले प्रोग्राम में रेमन राम नारायण और राकेश यंगकरन की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश

अस्ताना गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है मिस्टर ऑलराइट और साथियों की आवाज में।

ऑल राइट और साथियों की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई आसरो भी थे कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS के जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई। चले प्रोग्राम में लोकल टाइम प्रोग्राम में गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है मिस्टर ब्लैक की आवाज

वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। तकरीबन 2 बजे तक ये प्रोग्राम पेश होगा और हमारा प्रोग्राम भी तकरीबन 2 बजे तक पेश किया जाएगी आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में मिस्टर राहुल की ओर। यार दीवाना होता है उसके बाद पन्ना घी तमन्ना।

गाना उस प्रोग्राम में पेश की गए। सुनने वालों अभी अभी हमने देखा कि हजारों हजारों सुनने वालों इस वक्त दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का

या वास में गाना बज प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों आपको मालूम होना चाहिए वही हिट और हॉट प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा हर रविवार को पेश किया जा रहा है 3 बजे से लेकर के और 6 बजे तक। ग्लैन रामबाली की जरिए बैठक गाना मास्टर ग्लैन रामबाली की जरिए हर इतवार वही

0: और इसी तरह से प्रशांत प्रशांत की आवाज में ये गाना पेश की गई टुंग टुंग बराफू। हमारी बहुत सी सुनने वालों स्टूडियो की ओर तार कर रहे हैं, अपना अपना कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं कि इतने खूबसूरत गाने प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है और वो भी रेडियो SBS के जरिए। चलिए प्रोग्राम में अब की बार
1: अभी दे दो
0: ये गाना है।

गानाबज प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आशा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए हमारा प्रोग्राम को भी आप सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो की जरिए भी। सागर मलिक रोबर्टो और साथियों की आवाज

सागर मलिक रोबर्टो और साथियों की आवाज में अभी आपने सुना लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। बहुत सी सुनने वालों बस

एडवांस में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। शनिवार का दिन है, वीकेंड है और रेडियो वेव्स भी इसका प्रोग्राम आप सुन रहे हैं।

चले प्रोग्राम में प्रशांत खन्ना और पापू मैन की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

शान खन्ना और पापा मैन की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अब की बार लकी शरण की आवाज

रेडियो SBS के जरिए लकी सरन की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। सुनने वालों लोकल टाइम प्रोग्राम का एक आखिरी और आखिरी गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में और इसी गाना के साथ हमें

कल सुबह ठीक 8 बजे मैं आप सभी सुन वालों से बस फिर मिलूंगा। तब तक के लिए हमें इजाजत और आज्ञा दीजिए। मैं था आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए हमेशा मुझे तार कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर 0325656560 पर। आप लोगों से हम फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस वीकेंड। कल सुबह ठीक 8 बजे मैं आप सभी सुनने वालों से फिर मिलूंगा।

इतना प्यार करते हैं तुमको सनम, मेरे दिल से पूछो ना। आपने सुना फिल्म बनारस से हिमेश रेशमिया की आवाज में। और अब आप सुनिए सुनिधि चौहान की आवाज में अगला गाना प्रोग्राम रेडियो SBS का। फिल्म धूम 2 से आप सुनिए क्रेजी क्यारे।

भर दो झोली मेरी, वास्कोसोंगदोर अदनान सामी खान ने क्वाम आय द फिल्म भजरंगी भाईजान। अत फोहंत लीजिए इन अत प्रोग्राम गीतों के लहर फिया रेडियो SBS इस गजोंगदोर शान एंड अलकायाचनिक कॉम्ट आय द फिल्म तलाश एंड इट इज तूने कहा जब से हा।

मेरा दिल तेरे लिए धड़कता है वाज आउट द फिल्म आशिकी एंड इज गेजोंग डोर उदित नारायण एंड अनुराधा पौडवाल. Het volgende liedje in het programma Geet om Killeher is gezongen door Nawazuddin Siddiqui. Uit de film Bole Churia komt Swaggy Churia.

मुझे साजन के घर जाना है, इसका सॉन्ग दूर अलका याचनिक, सोनू निगम एंड जसपिंदर नरूला एंक वामा द फिल्म लज्जा. Het volgende liedje in het programma Giet Onkelher via Radio SBS is gezongen door Sunidhi Chauhan en KK. Uit de film Basik Pal komt Ashk Bhi Muskuraye.

मुझे रंग दे इसको सो दो। आशा भोसले एंक वाम द फिल्म तक्षक एंड आउट द एल्बम दुनिया जी से कहते हैं कम थो सो दो। जगजीत सिंह कल चौदहवीं की रात थी।

अरिजीत सिंह एंड चित्रा सिंह मैथ। कौन कहता है कि मोहब्बत की जुबां होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। दित प्रख्त लीजिए सुसों दो जगजीत सिंह एंड चित्रा सिंह। फोन लीजिए सो खुसों दो जगजीत सिंह एंड कम दे सकेर आई द फिल्म अर्थ। झुकी झुकी सी नजर, दिल में प्यार है कि नहीं।

0: मैंने कोई जादू नहीं किया, तू ही मेरे पीछे आया पिया आवाज और द फिल्म मुझे कुछ कहना है। दिल्ली तेज खजोंदोर कुमार सानू एंड प्रीति और द फिल्म यादें कम तो फोन लीजिए फिर रेडियो SBS। जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले।
1: जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले। जब दिल मिले तब गुल खिले जब गुल खिले तब दिल मिले मिले मिले मिले मिले दिल मिले।

थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी। बेहतरीन गाना आपने सुना अलका याचिक और उदित नारायण की आवाज़ में फिल्म मैंने दिल तुझको दिया है से। तो अब आप सुनिए फिल्म शुभ मंगल सावधान से अरिजीत सिंह की आवाज़ में राख।

जब भी तेरी मैं कम देखता हूँ इस खजादोर जुबेन नौटियाल, दिस इज सो मॉय ना ना जुबेन हाउ फेदर मैथ शफाकत अमानत अली एंड कैरलिजा, ये रात ताल अद फिल्म कभी अलविदा ना कहना कौम तत लीजिए मितवा।

ये बेखुदी दीवानगी आउट द फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे एन खसों दूर जुबेन नौटियाल कॉम्प्ट होने लगा आउट द फिल्म एंथम।

गूंजी सी है सारी फिजा, जैसे बजती हो शहनाइयाँ। आओ ना क्वम अ द फिल्म क्यों हो गया ना, एन एट इसका अख्तियार दूर विवेक ओबेरॉय एन ऐश्वर्या राय दी तैयार वारे से आने देते। Uit de film Wanted komt het volgend liedje via Radio SBS, gezongen door Wajid en Amrita Kuk. Just love me, love me, love me.

लीना ओ लीना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में फिल्म स्वर्ग नरक से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है महबूबा महबूबा फिल्म अजनबी से।

सोना नहीं चांदी नहीं यार न मिला, अरे प्यार कर ले, इस द फिल्म शुक मंगल सावधान एन इस गजोंदर बप्पी लहरी आयुष्मान खुराना एंड आंद्र. गाँव फेदर मैथ द फिल्म हम दिल दे चुके सिनम, हम दिल दे चुके सिनम, द टाइटल सॉन्ग दिस.

0: बंधन है, पायल ने मचाया शोर, वॉज आउट द फिल्म मोहब्बते. और बहुत लीजिए ओ का द फिल्म मोहब्बते, एंड इट इज आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है, कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है.
1: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी. कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी. जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है. और मैं सिर्फ यही कह पाता था.

मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। आपने सुना ये बेहतरीन गाना मुकेश जी की आवाज में फिल्म श्री 420 से, और अब आप सुनिए फिल्म आवारा से। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियन की, लता मंगेशकर की आवाज में आप सुनिए बेहतरीन गाना।

पहला प्यार अरमान मलिक की आवाज में आपने सुना फिल्म कबीर सिंह से, और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में फिल्म आजाद से है। लता मंगेशकर की आवाज में आप सुनिए कितना हसी है ये मौसम।

Radio SBS luister je via de website www.radiosbs.nl. Wilt u reageren, kan het altijd. Bel maar gerust naar de studio met 032-62-66-11. En voor alle andere info kun je altijd bellen met 032-65-65-60. Aage bhi jaane na tu, piche bhi jaane na tu, jo bhi hai, bas yahi ek pal hai. आपने सुना आशा भोसले की आवाज में फिल्म वक्त से, और अब आप सुनिए फिल्म आज का अर्जुन से लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में। गोरी है कलाइयां, तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां।